0: आप हमारे वार्ता कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में हम दीन के महत्वपूर्ण मुद्दों, संस्कृति, समाज और रोजमर्रा की जिंदगी पर रोचक विश्लेषण और चर्चा प्रस्तुत करते हैं। हमारे साथ बने रहें। उपयोगी वार्ताएं और ताज़ा खबरें हमेशा हमारे प्रसारण में उपलब्ध है।
1: नमस्ते जी पेरिस निवालो आप रेडियो ओजित ओजिक हिंदी बहा को सुन रहे हैं। मैं आपको रोबिया बलखेत जेग फारसी साहित्य की एक महान और ऐतिहासिक हस्ती के बारे में बताना

0: आवाज़ तैजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ तैजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में तजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं तजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते जी प्यारे सुनने वालों, आप रेडियो ओज़ी तजिक हिंदी कांत को सीधे आकाश में सुन रहे हैं। आपके साथ है शोरा न्यूज़ोवा और हमारे प्रोड्यूसर अबू मंसूर इस्माइल।
2: तजिकिस्तान और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर, ताज़ा और विश्वसनीय खबरें आधिकारिक सूत्र से रेडियो आवाज़ तजिकी हिंदी विभाग से 105.5 FM में सुन सकते हैं।
1: इस घंटे की मुख्य खबरें। तजिक डॉक्टर तुर्क में अपने पेशेवर कौशल में सुधार करते हैं। यूनेस्को के ढांचे में तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच सहयोग के संबंधों पर चर्चा। तजिकिस्तान और भारत के संयुक्त आयोग के बैठक दुशंबे में आयोजित हो रही, समाचार हिंदी भाग को सुन सकते हैं। तजिक डॉक्टर 8 से 12 जून तक तुर्की गणराज्य में अपने पेशेवर कौशल को उन्नत कर रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान वे महामारी संबंधी स्थिति के कलान, रोकथाम और संक्रमण को रोगों पर प्रतिक्रिया जैसे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। तजिकिस्तान और तुर्की के डॉक्टरों ने स्वास्थ्य सेवाओं के समन्वय, सूचना प्रदान और महामारी के स्थिति में बेहतर तैयारी को मजबूत करने पर भी विचार विमर्श किया। ये प्रशिक्षण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत आयोजित किया गया है और इसका उद्देश्य विशेषज्ञों की क्षमता बढ़ाना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करना है। जून को तजिकिस्तान के तुर्कमेनिस्तान में नियुक्त राजदूत वफोनियत बेगजोदा ने तुर्कमेनिस्तान के विदेश उप मंत्री मयाहरी बशीमोवा और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रीय यूनेस्को आयोजित के सचिव चिनार रुस्तमोवा के साथ बैठक की। बैठक में संयुक्त राष्ट्र के जैसे यूनेस्को के अंतर्गत सांस्कृतिक, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया गया कि तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और प्रचार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सक्रिय भागीदार है। यूनेस्को के तंत्रों के तहत सहयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता पर भी सहमति व्यक्त की गई। वार्ता के दौरान यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति के अंतर्गत पारस्परिक सहयोग और समर्थन के संबंधों पर भी विचारों का आदान प्रदान हुआ। अंत में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय स्तर पर तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विशेषकर यूनेस्को के ढांचे में सहयोग को और आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराए। दस जून को दुशंबे शहर में तजिकिस्तान और भारत के बीच व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर संयुक्त अंतर सरकारी आयोग की बराबरी बैठक वर्चुअल रूप में आयोजित की गई। बैठक में व्यापार और निवेश, कृषि, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, उद्योग, डिजिटल तकनीकी, पर्यटन, परिवहन तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने औद्योगिक सहयोग के विकास, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन और अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण जैसे विषयों पर भी विचार का आदान प्रदान किया। ये आयोग दोनों देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने तथा व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। پاکستانی اور راشتر مکی علائی میں تاجکستان کا پرتنی مندال سماجک وکاس پر آیوجت ایک سید ایوید میں شامل ہوا جو ویکلانگ ویکتیو کے ادھے کارو پر کنویشن کے 19ویں سمیلن کے تحت آیوجت کیا گیا۔ اس کارکرم میں تاجکستان کے پرتنیدھی نے دیش میں سماجک سرکشا ویکلانگ ویکتیو اور بزرگوں کے سمرتھن میں کیے گئے سدھاروں اور اپلبدھیوں کو پرستوت کیا۔ اس افسر پر بتایا گیا کہ تاجکستان میں سماجک سرکشا پرنالی میں ویاپک سدھار کیے جا رہے ہیں جس سے سیواؤں کے پہنچ اور پرواشیلتا میں وریدھی ہو رہی ہے۔ کارکرم کا ادیش مدھیہ ایشیائی دیشوں کے بیچ سماجک وکاس کے کھیتر میں کھیتر سہیوگ کو مضبوط کرنا اور سماویشی سماج کے نرمان کو بڑھاوا دینا تھا۔ جون کو واشنگٹن میں آیوجت گلوبل انرجی فورم میں تاجکستان کی ارجا کشمتا اور اپلبدھیوں کو پرستوت کیا گیا۔ تاجکستان کی امریکہ میں راجدود ذوقی زودان نے دیش کے ارجا کھیتر میں پرگتی اور پرموک پریوجناؤں پر پرکاش ڈالا۔ انہوں نے بتایا کہ تاجکستان ارجا سواتنترتا کو ایک رنیتی لکشیہ مناتا ہے اور اس دشا میں روکون جلوے دیود سنیانتر تتھا کس ہزار پریوجنا جیسے بڑے یوجنائیں لاگو کی جا رہی ہے۔ فورم ارجا کھیتر کے وشیشکیوں اور وبھن انتراشٹریہ سنگٹھنوں کے پرتندھیوں نے بھاگ لیا اور وچار کا دان پردان کیا۔ پیرس نیوالوئے تستا یہ سماچار ہمارے دوسرے پرسارن جا رہی ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہی ہے۔

आप हमारे वार्ता कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में हम दीन के महत्वपूर्ण मुद्दों, संस्कृति, समाज और रोजमर्रा की जिंदगी पर रोचक विश्लेषण और चर्चा प्रस्तुत करते हैं। हमारे साथ बने रहें। उपयोगी वार्ताएं और ताज़ा खबरें हमेशा हमारे प्रसारण में उपलब्ध है। नमस्ते जी, फिर सुनने वालों, आप रेडियो जी हिंदी बहा को सुन रहे हैं। मैं आपको रोबिया बल्खी तजेग फारसी साहित्य की एक महान और ऐतिहासिक हस्ती के बारे में बताना

0: महिलाओं के उच्च जस्तहान के प्रतीक के रूप में आम्र हो गया है। उनके 1025वीं जयंती के अवसर पर तजिकिस्तान तथा अन्य फारसी भाषा देशों में अनेक वैज्ञानिक सांस्कृतिक और साहित्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य रोबिया बल्खी के साहित्य विरासत को सम्मान देना, उनके रचनाओं का गहन अध्ययन करना तथा फारसी तजिक सभ्यता के विकास में महिलाओं की भूमिका को उजागर करना था। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, गुलमेहज चर्चाएं, कव्यपाठ संभावनाएं, प्रस्तुत प्रदर्शनियां तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्वानों और शोधकर्ताओं ने रोबिया बल्खी के जीवन, साहित्य के योगदान और साहित्य के इतिहास में उनके स्थान पर अपने विचार प्रस्तुत किए तथा उनके रचनाओं के महत्व को वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए रेखांकित किया। रोबिया बल्खी केवल एक कवयित्री ही नहीं बल्कि साहस और स्वतंत्र चिंता के प्रतीक भी मानी जाती है। बिकताश के प्रति उनके प्रेम और उनके जीवन के दुखद कथा को सदियों से पूर्व साहित्य में निष्ठा, प्रेम और मनुष्य के स्वतंत्र चयन के अधिकार के संघर्ष के कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उनके जीवन का ये पक्ष उन्हें फारसी भाषा संस्कृति के सबसे प्रसिद्ध हस्तियों में से एक बनाता है। रोबिया बल्खी की 1025वीं जयंती ने समाज को अपनी सांस्कृतिक और साहित्य विरासत की ओर पूर्ण ध्यान देने का अवसर प्रदान किया। इस उत्सव ने राष्ट्रीय आत्मचेतना को मजबूत करने, पुरुषों के धरोहर के प्रति सम्मान बढ़ाने तथा आधुनिक समाज में महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। रोबिया बल्खी के विरासत आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उनकी कविताएं युवाओं को ज्ञान से प्रेम करने, नैतिक शुद्धता बनाए रखने, निष्ठावान रहने और मानवीय मूल्यों का सम्मान करने की प्रेरणा देती है। इसलिए उनके 1025वीं जयंती केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि नहीं बल्कि संपूर्ण तजिक फारसी साहित्य और संस्कृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। रोबिया बल्खी का नाम साहित्य के आकाश में एक उज्ज्वल सितारे भी बहनते से देव स्मरण किया जाएगा और उनकी रचनाएं आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा, ज्ञान और आत्मा पहचान का स्रोत बने रहेंगे। अब हम इस विषय पर विज्ञान अकादमी के यूरोशियन अध्ययन संस्थान के शोधकर्ता मीर सईद रहमानियान के विचार सुनेंगे।
1: ताजिकिस्तान का वो है सहम है इस बारे में, उसमें भी ये जिक्र है कि ताजिकिस्तान, ये भी बताया कि रोबिया बल्खी एक नमूना है। नमूने आदि नहीं था, उसमें जो पैगाम है इंसान के लिए एक ज़मीर को निया निया जो अफकार है उसको दिला रहा। क्योंकि आप जब जब हम अदबियात को नज़र करते हैं उसमें एक एक चीज़ है, इश्क मोहब्बत। रोबिया बल्खी भी इस तरह है कि इंसान किस तरह क्या है, इसके बारे में उन्होंने काफ़ी अशबार में बयान किया। ये जो यूनेस्को में ये कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ताजिकिस्तान के तशब्बुस के साथ, ये इसका मतलब ये है कि इंसान जो हर मसाइल को जो उसमें अभी मुश्किलात हो रहा है उसको सरी वक्त हम एक जा एक वक्त में सरी वक्त एक जा करना उसको हल करना है। मेरा अल्लामा इकबाल के एक शेर है, शेर को मैं बतौरी खुलासा पेशनियात करना चाहती हूँ। उसके बहुत मशहूर शेर ये है कि खुदी को घर घर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदा से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ना उम्मीदी जवाल इल्म व इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजों में। ये रोबिया बल्खी एक राजदान था जो इंसान के लिए जो मोहब्बत मेहर था उसको बयान किया।
0: रोबिया बल्खी का जन्म प्राचीन नगर बल्ख में हुआ था जो अपने समय का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र माना जाता था। उनके पिता बल्ख के प्रतिष्ठा और समृद्ध अभिजात वार से संबंधित

कर देता है हैरान तब और भी, जब मरहलों में बन जाता है दल, अपने सारे दर्द गम बुलाकर साथ हंसता है सारी रात। उसे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, बस कुछ पल तुम्हारे साथ का है वो मोहताज। दोस्त वो है जिसे दोस्ती निभाना नहीं देती।